0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक, इट्स 6 AM।
2: अहिले बिहानको 6 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 8 AM
3: अहिले बिहानको 8 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक 16 AM
2: अहिले बिहानको

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 11 AM
3: अहिले बिहानको 11 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: अहिले मध्याह्नको 12 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाईं सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक 7 PM
2: अहिले साँझको 7 बज्यो।

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हर पल हर तपाई सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक 9 PM
2: अहिले रातको 9 बज्यो।

एवं सुमिता लिमुखिम याखा चैनपुर नगरपालिका 10 खरङ संखुवा सभा एवं समस्त लिमुखिम परिवार एवं नहासै ल फेरि बढी संगीता बुबा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। एवं सुमिता लिमुखिम याखा एवं लिमुखिम परिवार चैनपुर नगरपालिका 10 खरङ संखुवा सभा एवं सुमिता लिमुखिम याखा एवं सुमिता लिमुखिम याखा सुमिता लिमुखिम याखा एवं लिमुखिम परिवार चैनपुर नगरपालिका 10 खरङ एवं बहिनीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। एवं लिमुखिम परिवार चैनपुर नगरपालिका 10 खरङ प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। एवं

0: रेडियो अरुण अरुण 97.6 MHz हरपल हर तपाई सँगै।
1: रेडियो अरुण टाइम चेक
2: इट्स 5 AM
3: अहिले बिहानको 5 बज्यो।